0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
3: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
6: A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
7: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से रब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

डालते हैं पानी, जरूरत से ज्यादा उसमें खाद नहीं डालते, पानी देना भूलते नहीं, भूलते फर्टिलाइजर का इहतमाम करना है और कीड़ों से बचाना है, और जो गैर जरूरी किस्म के पौधे निकल आते हैं उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और क्या करते हैं, कब्बे वगैरह से बचाते हैं, बारिश का भी इंतजार करते हैं। सर्टन टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जिनको विंटर में बोरियां पहना देते हैं और कवर कर देते हैं वरना वो खराब हो जाएं, और क्या करते हैं, पूर्ण निकलने का इंतजार करते हैं, और फलदार हो तो फल निकलने का इंतजार करते हैं, और निकल जाए तो फिर क्या करते हैं, फल वक्त पर उसको काटते भी हैं। फिक्र होती, सबसे ज्यादा क्या होता है सारे अमल में अव्वल से आखिर तक, फिक्र, ध्यान, पूरा दिल अटका रहता है ना उस चीज की तरफ। जब जाकर आपको कुछ हासिल होता है तो बिल्कुल इसी तरह मुत्तकी शख्स गाफिल इंसान नहीं होता, बेखबर नहीं होता, बेफिक्री जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसका दिल दिमाग जागता रहता है, उसे आखिरत की फिक्र होती है, उसे हिसाब किताब की फिक्र होती है, वो मुसलसल अलर्ट रहता है, वो किसी दिन ऑफ ड्यूटी नहीं होता। आप देखिए कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको अचानक समर में फिर कहीं जाना होता है, कोई ट्रैवलिंग होती है या कुछ, फिर आप क्या कह के जाते हैं, क्या करके जाते हैं, किसी के हवाले करते हैं, किसी दोस्त के, किसी नेबर के, किसी को, कि प्लीज इसको पानी लगा देना, प्लीज ऐसे कर देना। आप ये थोड़ी करते हैं अच्छा खुद ही आएंगे फिर देख लेंगे, नहीं, पूरी केयर करनी। तो इस पूरे किरदार में, फार्मर के पूरे किरदार में एक लफ्ज आती है, केयर एंड कंसर्न, तो पूरी तरह वो केयरफुल होता है। तो मुत्तकी शख्स भी केयरफुल होता है, कॉन्शियस होता है, अपना दिल दिमाग इस्तेमाल करता है, चारों तरफ नजर रखता है, समझदार होता है, गौर व फिक्र करता है, एहतियात बरतता है। तो कामयाबी के लिए सारी सिफात जरूरी हैं। वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हर शख्स कामयाबी चाहता है, तो कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, हिदायत, हिदायत के लिए क्या जरूरी है, तकवा। तीन चीजें लिख लीजिए। क्या हम सब कामयाब होना चाहते हैं या नहीं, क्या हम इसमें सीरियस हैं, क्या हम आखिरत में कामयाब हों, क्या हम चाहते हैं कि ये बात हमारे बारे में हो, व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, क्या हम चाहते हैं कि जब हमारी मौत आए तो हमें ये खबर मिले कि तुम कामयाब हो गए और हमें भी यही पैगाम मिले। तो कामयाबी के लिए क्या जरूरी है, मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल, लेकिन डायरेक्शन लेस स्ट्रगल नहीं। कौन सी स्ट्रगल, उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, हिदायत चाहिए, और वो कौन देता है, अल्लाह देता है, और उसके लिए किताब जरूरी है पढ़ना। और फिर हिदायत किस दर्जे की मिलती है इंसान को, कितनी मिलती है, जितना तकवा होता है, और तकवा के लिए क्या चाहिए होता है, मुसलसल फिक्रमंदी, कोशिश चाहिए होती है। ठीक है, वो कोशिश कहाँ नजर आती है, कभी इकामत सलात में नजर आती है, और कहीं मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून में नजर आती है। तो ये कौन लोग हैं, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आयत नंबर 6 और 7 सूरत अल बकरा। हम एक एक लफ्ज़ को ज़रा देख लेते हैं कि आपने इससे पहले क्या ये पढ़ा है और नए लफ्ज़ कितने हैं, क्योंकि नए लफ्ज़ अगर आप ज़्यादा तवज्जो से याद कर लें और जो आते हैं वो साथ दोबारा दोहरा लें तो बहुत जल्द आपको सबक याद हो सकता है। तो चलिए अपने टेक्स्ट के ऊपर देखिए, इन्ना, बेशक, क्या ये लफ्ज़ पढ़ा आपने पहले, नहीं पढ़ा, ये नया लफ्ज़ है आपके लिए। इन्ना का मतलब होता है बेशक, अल्लज़ीना पढ़ा आपने, जी हाँ, कफरू पढ़ा नहीं लेकिन जानते हैं ना, जी हाँ, काफारा, काफारा, सवा उन बराबर है, उर्दू में लफ्ज आता है मुसावात, मुसावी, जानते हैं ना आप, उसी से है ये। अलैहिम पढ़ा है कहाँ, गैरिल मग़दूब अलैहिम, अनामता अलैहिम, आ खा हमजा, अब हमजा के ऊपर जबर है और अरबी जबान में जैसे बिस्मिल्लाह में बा का हर्फ जो था वो अलग था और उसका माना साथ था, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह के साथ लाम का हर्फ था, लेटर था एक और उसका मतलब के लिए था, इसी तरह आ हमजा सिर्फ एक लेटर है लेकिन इसका मतलब क्या है, खा या क्या भी होता है इसका माना। ठीक है, अनजरतहुम ये नया लफ्ज है, लेकिन उर्दू में आप लफ्ज नजीर पढ़ते हैं, नजीर, नजीर कौन होता है, डराने वाला, खबरदार करने वाला, तो अनजरता का आप देखिए नून जाल रा, ये इसका रूट है, नून जाल रा, नजारा, यंजुरु।

0: स्ट्रेंथ क्या है, कैसे लोगों से दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, किस जगह किस एनवायरनमेंट के अंदर, यू नो, आपने चेक कर लिया चीज़ों को, ये नहीं है, तो आप दूर तक देखने की एबिलिटी रख सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आपको एक घबराहट की वजह से एक आप सोचने का तरीका एक ईजाद करते हो। बाकी लोग क्योंकि ताकतवर होते हैं, यू नो, चीज़ों को लगता है कि हैंडल कर लेते हैं, पावर थ्रू भी चीज़ों को कर लेते हैं, अपनी मनमानी कर लेते हैं, तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था। हमारे घर में मैं एक हद तक ही जोर लगा सकता था, उसमें घर में एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के दो लोग थे जो सब रन कर रहे थे, तो उसमें मैं कब तक ये करता रहता। तो बिल्कुल इसी तरह फिर जब ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाती है तो फिर इमेजिनेशन भी बढ़ती जाती है, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में आप अपने साथ सच बोलना शुरू कर लेते हैं। मुझे बचपन से लोग कहते थे आप ये इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें बड़े अच्छे हैं, जवानी में कहते थे आप ये हैं, आप वो हैं, आप फलां हैं, मुझे अंदर से पता था ये जो भी कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है, मुझे पता है कितना मैं हूँ, किस योगा में हूँ और बाकी किस तरफ मुझे काम करना है और मुझे किस, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था सब कहते थे आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, वो मुझे एग्जैक्ट पता था कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, एक हद तक मेरी एबिलिटी है, इससे आगे वो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मुझ में नहीं है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है या टेक्निक नहीं है, या तो फिर मुझे वहाँ रोक कर किसी और तरफ सोचना था। मैं इस तरह नहीं कर सकता था, मैं खेलता रहूँ और अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर लूँ इस सोच में कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में चला जाऊँगा, आई वॉज़ नॉट दैट गुड, सिंपल। इस तरह बाकी मैंने कुछ और चीज़ें ट्राई की, आर्मी में गया, कुछ और चीज़ें मैंने देखी, सिविल में कुछ काम किए मैंने देखा, फिर एक दिन मैं इस चीज़ें करके छोड़ता चला गया और यू नो चीज़ों को ट्राई करता गया। लोग जो कह रहे थे कि वक्त ज़ाया हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं था, लोग जो कह रहे थे कि आप इसमें अच्छे हैं उसमें बुरे हैं उनको कुछ पता नहीं था, यू नो लोग जो है ना वो बहुत लगता है उन्हें पता है बट इतना उनको पता नहीं होता, वो लगता है कि वो समझते हैं लेकिन वो इतना समझते नहीं जितना आप समझते हैं, क्योंकि आप सिचुएशन के अंदर होते हैं और आप ऑनेस्टली सिचुएशन को देख रहे होते हैं और आप दीवाने का ख्वाब नहीं देख रहे होते, आप हाजिर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं और आप प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, फिर लोगों की बातों में आप नहीं आते। एक वक्त के बाद जब आप ये सारी चीज़ें सीधी कर लेते हैं, फिर जब आपसे लोग कहते हैं ना आप ये कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ चलिए ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जब मुझे किसी ने कहा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, मुझे ये भी किसी ने पहली दफ़ा कहा था आप रेडियो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, तो मैं फिर डैलस में आया तो मैंने कोशिश की चलो रेडियो करने की कोशिश करते हैं तो वो बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह मुझे किसी ने कहा था आप लिख बहुत अच्छा सकते हैं, ये आशा जी ने कहा था बाय द वे, स्टेज प्ले वाला हमने किसी से लिखवाया था, उल्टा सीधा था, उल्टी सी मैं ये चीज़ करवाना नहीं चाहता, तो उन्होंने कहा था ऑनेस्टली आई थिंक यू कैन राइट सो मच बेटर देन दिस आज़ाद, और दिन थे नहीं मेरे पास, कुल चार दिन रह गए थे, उसमें जी लैंड कर चुकी थी सैन फ्रांसिस्को में, तो अब मुझे ही लिखना था, तो जब मैंने लिखा तो वो जिस तरह लिखा गया जिस तरह फ्लो आया उसके अंदर मुझे भी मज़ा आया, तो फिर हमने दूसरा लिखा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा लिखा, फिर यही तरीका था ऑब्जर्वेशंस को लोगों तक पहुंचाने का, फिर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने ये काम करना था आप साथ साथ प्रिपेयर करते जाते अपने आप को, उस पर काम करते जाते हैं मेंटली फिजिकली और यू नो उस क्राफ्ट के ऊपर, फिर एक दिन आता है जब आप सही राइट टाइम एंड स्पेस में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो वो फिर जब हम रेडी हुए तो पहले उस्मा गिलानी वाला आया, फिर नुमान एजाज का आया, फिर अभी एक दो और चीज़ों के लिए हम तैयारी पकड़ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अब माइंड बन गया हमारा तो अब सब कुछ सामने आ जाएगा खुद ब खुद। तो दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, और कैसे कैसे आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं मेरी ज़िंदगी की, जो सारी चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ इसलिए कि आपको मैनिफेस्टेशन नज़र आ सके, इसलिए कि एक आम सा आदमी आम से तरीके से आम से यू नो छोटे से टैलेंट के साथ अगर ये चीज़ें कर सकता है तो ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे से ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे से ज़्यादा जो है उनका टैलेंट है वो, मेरे से ज़्यादा उनके पास गिफ्ट है और मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी है उनके अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे हैव मोर लाइफ देन आई हैव इन साइड ऑफ मी, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं वो भी बहुत ऐसी हैं कि जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तो फिर मैं ये करके उनको सिर्फ दिखा देता हूँ कि वो जहाँ तक जाना चाहें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो सकता। मैं सांस ले लूँ?
1: हाँ ले ले।
0: क्या सीखा आपने?
1: बहुत कुछ सीखा आज मैंने।
0: आपको हर दफा ये लगता है कि इतना सीख लिया अगली दफा क्या सीखूंगी, फिर आपको लगता है नहीं आज सीखा हमने।
1: नहीं अभी जो बात कर रहे थे आप, तो माशाल्लाह आप बहुत आर्टिस्टिक हैं, तो आर्टिस्ट की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली?
0: पहले तो आर्टिस्ट वो होता है जो पहले थोड़ा सा ऑटिस्टिक हो। समझ रहे हैं? आर्टिस्ट जो होता है ना वो पोएट एट हार्ट होना या आर्टिस्टिक होना, कई दफ़ा जिस एनवायरनमेंट में हम हैं ना, हम इतने बदकिस्मत एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं कि आर्टिस्ट से शुरू में ही लोग डर जाते हैं, उसको नाजुक समझना शुरू हो जाते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। आप कोई बंदा, जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई बंदा एफएससी में अगर साइंस

0: के बजाय आर्ट्स ले लेता, सारे उसको पहले से ही वीक समझना शुरू कर देते थे। ठीक है, तो मैं, अच्छी बात यह है जो काम मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, शुरू में मुझे नहीं पता था ये सब कुछ कि मैं ये यू नो एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, पोम्स एंड ये सब कुछ करूँगा, ना मैंने कभी ज़िंदगी में कोई एक लाइन भी लिखी थी। लेकिन मैं जिस प्रोफेशन में, मैं लकी ये था कि मैं जिस प्रोफेशन में गया ना, वो प्रोफेशन आपको मेंटली और फिज़िकली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है, आपको मैनेजमेंट का आदमी बनाता है, आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आप पहले खुद को मैनेज करते हैं फिजिकली, इतनी मुश्किल वक्त में से आप गुजरते हैं, आपको पता चलता है आप नहीं मरेंगे, और फिर उसके बाद आप उसकी मैनिफेस्टेशन देखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पावर्स दी जाती हैं, और फिर आपके लिए बहुत सारे बंदे हैं जिनका आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग से लेके उनकी लाइफ पूरी आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ऑफिस को मैनेज करना, किसी आउटफिट को मैनेज करना, किसी बंदे की लाइफ को मैनेज करना, और ये सब आप खुद पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं खुद पर अप्लाई करना, लेकिन जब आप खुद पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एक यूनिट के या किसी आउटफिट के फाइनेंसिस को हैंडल करते हैं, आप अपने भी हैंडल करना सीख लेते हैं। उसमें 400-500 टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट इलाकों से लोग आए होते हैं, किसी को प्यार से समझाना है, किसी को गुस्से से, किसी को डंडे से, किसी को सजा से, किसी को वर्बल वार्निंग से, किसी को यू नो बाकी चीज़ों से। उसके बाद ये सब तरीके भी आप सीखते हैं और अपने आप पे और अपनी फैमिली पे, अपने घर पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट्स हैं। जब आप ये सीख लेते हैं मैनेज करना, तो उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपको पता होता है, ये मैं चीज़ क्रिएट करने जा रहा हूँ या मैं काम करने जा रहा हूँ, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे, मैं सपोर्ट खुद को कैसे करूँगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है मेरी। तो आप मैनेज करते रहते हैं लाइफ को साथ, हर वक्त आप मैनेज कर रहे होते हैं, यही काम है। सो जब आप मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर कब आप पोएम्स लिखते हैं, फिर किस प्लेटफॉर्म में आपने ये पोएम सुनानी है, या किस चीज़ का इसको हिस्सा बनाना है, प्ले अगर आप करते हैं, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो का, जिसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, डिजिटल मीडिया भी इन्वॉल्व है, शहर में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक आपने एक चीज़ बना ली है, तो उसमें आप अगर लोगों को मूवीज़ दिखाना शुरू करें तो वो भी चल जाता है काम। अब आप आर्ट एग्जिबिशन करें कि जिस किस्म के हमारे पास लोग हैं, वो भी चल जाता है, क्लोज एग्जिबिशन करें वो भी चल जाता है। इसी तरह आप स्टेज प्ले लोग जाके यू नो ब्रॉडवे पे जाते हैं, इतने महंगे महंगे $500-500 के टिकट ले रहे होते हैं, $50 में भी आप ब्रॉडवे का एक टाइप का एक शो दिखा सकते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हंसना खेलना और कोई मकसद की बात भी हो सकती है, तो आप स्टेज प्ले कर लेते हैं। इसी तरह आप यू नो फिर टाइम मिलता है आपको, आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो फिर एक्टिंग असल वाली देखें कि होती क्या है, जुमले पे जुमला बिठा देना या लाइन डिलीवर कर लेना एक्टिंग नहीं होती है। तो इसके लिए फिर मेथड एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए एलए गया मैं, वहाँ से फिर मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो स्कूल ऑफ आर्ट एंड थिएटर है, तो उसमें फिर थिएटर कैसे बनता है, उसमें कैसे एक्टिंग होती है, थिएटर की एक्टिंग, फिल्म की एक्टिंग, वेब सीरीज़ की एक्टिंग, टीवी की एक्टिंग, ये डिफरेंट होती है। इसे बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे नुआंसेज होते हैं, तो आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है। ये करेंगे तो होगा, कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और कोई बंदा भी मुझसे या अपने आप से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं पहले दिन ही बहुत अच्छी नज़म लिख दूंगा, बहुत अच्छा प्ले लिख दूंगा, या बहुत अच्छी एक्टिंग कर लूंगा। लेकिन अलॉन्ग द वे, क्योंकि ये पर्सनैलिटी और चीज़ें बिल्ड अप हो रही होती हैं आपके अंदर, वो कैरेक्टर लिखा किसने, मैं नहीं लिखा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट कौन कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, एक्ट उसमें एक कौन कर रहा है, वो भी मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ऐड अप करती हैं कॉन्फिडेंस से, और जो भी घबराहट और नर्वसनेस होती है उसको हैंडल करती हैं, और आप एक काम कर जाते हैं और डिसेंट सा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो पहले से दूसरे से बेहतर होता चला जाएगा। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक्टर्स होते हैं, जो एक ही काम करते हैं, वो यही काम 15-20-25-30 साल से कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उनका काम ज़्यादा रिफाइंड होता है। अगर आप उनके साथ एक जगह हैंडल ही कर लें उस फ्रेम को, स्पेस को, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हमने हाला में किया, वहाँ पे सबसे जूनियर मैं था जो पहली दफ़ा कैमरा फेस कर रहा था, बाकी 15-20 सालों से ये काम कर रहे थे लोग, सो उनकी बहुत सारी फिल्म्स कर चुके थे वो, तो उनके साथ भी काम किया, ठीक ही था, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि बहुत बेहतर किया जा सकता था उसमें कुछ चीज़ों को, वरी करने के बजाय अगर मैं और ज़्यादा अच्छी टेक्निक से करता तो और भी अच्छा हो जाता। तो इस तरह ये चीज़ें खुल कर आहिस्ता आहिस्ता करने और खेलने से ये चीज़ें पैदा होती हैं। कुछ लोग लकी होते हैं, शुरू में ही जिस काम के लिए वो पैदा होते हैं उनके हाथ लग जाते हैं। कुछ लोगों को लोग बता देते हैं आप इसमें बड़े अच्छे हैं, उसमें वो काम करते हैं और उसमें वो एक्सेल कर जाते हैं। कुछ लोग अलॉन्ग द वे सिचुएशन एक ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक चीज़ का पता लग जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये रेडियो का शो, मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं शाय आदमी हूँ, एक नेचर बड़ी डिफरेंट किस्म की है, प्राइवेट भी बहुत हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन करते करते ये भी इतने सालों तक हो ही गया, अभी भी मैं रोज़ इस पर काम करता रहता हूँ बेहतर करने के लिए इसको। तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। फिर फिनेस इंसान के अंदर होना, आप खाना बनाते हैं कैसे पेश करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं कैसे करते हैं, लोगों के साथ चीज़ों का बैलेंस में, अगर आर्टिस्ट एक बंदा, बेसिकली आर्टिस्ट का काम पता है क्या है, आर्ट क्रिएट करने वाला एक ही है जिसने ये यूनिवर्स बनाई, जिसने ये दुनिया बनाई, वो आपको एक ब्रेन वेव देता है, आप उस ब्रेन वेव के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर एक चीज़ बनाते हैं, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो कोई लिखने की चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉम्पोजिशन है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उस मोमेंट में आप उस चीज़ को पकड़ते हैं और उसमें आपकी इतनी ज़्यादा से होती नहीं है, आप उसमें से खुद बाहर निकल जाएं और वो चीज़ जैसे है उसको वैसे पेश करने की कोशिश करें, और उसको नोक पलक संवारने में, जैसे यू नो एक स्कल्प्टर होता है ना, स्कल्प्टर जो होता है वो स्कल्प्चर बनाते हुए भी, वो किसी ने जब कहा था ना जो मुजस्मा होता है ना वो पहले से पत्थर के अंदर होता है, आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो सिर्फ उसकी जो साइड की फालतू की जो पत्थर है वो हटा देता है और उसके बीच में से वो निकल आता है। तो बिल्कुल इसी तरह आर्टिस्ट का भी एक्चुअल में ये काम होता है कि उसको एक चीज़ है, उसकी ब्रेन वायर्ड होता है एक सर्टन तरीके से, अब उसने उस ब्रेन वेव को पकड़ के उसको कैसे करना है। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं इसके साथ, कुछ लोग इसको बहुत एक गिफ्ट को गिफ्ट की तरह संभाल के रखते हैं आखिर तक, तो वो बहुत लंबे अरसे तक कोई चीज़ आपको दे सकते हैं। सो ये चीज़ होती है, कभी ये आपको हिट कर जाती है, कभी आप इसको हिट कर जाते हैं, और कभी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें आप एक काम करते हैं और वो काम निखर जाता है और उसमें आपको मज़ा आने लग जाता है, उसमें रेसिप्रोसिटी जो है, लोगों को जो चीज़ उसके एक्नॉलेजमेंट मिलती है उससे आपको डोपामिन इफेक्ट मिलता है और फिर आप चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। तो ये एक पूरा सफ़र हो सकता है किसी भी आर्टिस्ट का। कैसा था ये वाला आखिरी पॉइंट?
1: बहुत ज़बरदस्त था।
0: कोई पॉइंट मिस हुआ आज?
1: नहीं।
0: ठीक है, ये नाइक्विल हल्की सी रात को लेके अगर ये आदमी कर सकता है तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है।
1: आपने नाइक्विल ली और ये हाल है
0: रात को रात को छींके शुरू होगी, तबीयत ऊपर नीचे होगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ी सी ले ले ताकि सो भी जाए और सुबह का काम अब मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने वादा किया मंडे वेंसडे, तो अगर मैं मंडे वेंसडे को भी नहीं कर सकता, मैंने फ्राइडे ऑफ भी लिया हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चार दिन मैंने ऑफ लिए, तीन दिन मैं शो के बारे में और रेडियो के बाकी काम करता रहता हूँ, तो फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो कर, इतना करूंगा तो बाकी का काम भी होगा, और बाकी बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। ये जो मैंने बाकी दिन ऑफ लिए उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो जो मैं कर पा रहा हूँ ना, स्क्रिप्ट के ऊपर कर रहा हूँ, प्लेस के ऊपर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनाऊंगा, आपका दिल खुशी से गार्डन गार्डन हो जाएगा
1: इंशाल्लाह ताला। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
0: ठीक है, और आप इतने दिनों के बाद आए, उम्मीद करता हूँ, और आपने इतना साथ दिया, इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोगों के गोश गुजार किए आपने, ठीक है, उनके कानों में से गुजारे, इस तरह उनके कान साफ रहेंगे, और मेरा ख्याल है वो चीज़ नहीं होगी, वो एक दफ़ा उन्होंने जिसको हम जाने लगे आर्मी में, तो उन्होंने कहा जी आपके कान साफ़ करने लगेंगे, फिर कानों में जैसे सैलाब आ जाता था पानी का, आपको ने कभी कराया वो?
1: हाँ जी, वो पहले तो उसी तरह पानी डाल के साफ
0: दे वो डैमेज है, ये तो उसके पानी के अंदर केमिकल चीजें होती हैं, और इस तरह प्रेशर दे दे के कान का पर्दा फट सकता था, वो बेवकूफी थी करना, आजकल के जमाने में कोई सेंसिबल आदमी वो काम नहीं करता।
1: नहीं नहीं, वो पहले जमाने में होता।
0: और एक और जाहिलों ने काम किया, मेरे दांतों में शायद कहीं कैविटी थी मोलर्स में, उन्होंने उसमें मर्करी डाल दिया, अब जितनी भी मैं नई साइंस पढ़ रहा हूँ वो सब के सब कह रहे हैं कि आपने वो मर्करी निकालना है, और जो मर्करी निकालना है वो मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो मैंने कहा जी ये कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा आप नई नई चीज़ें आ गई जो बड़े हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पीछे, क्योंकि उसके फ्यूम्स होते हैं, मर्करी तो मतलब कातिल चीज़ है, पता नहीं क्यों ये मर्करी डाल रहे थे उस ज़माने में, लोहे से किसी तरह से काम चला लेते या कुछ और कर लेते, तो अब जो है वो उसको मैं अब जब भी सोचता हूँ कि इसको निकलवाऊँ मर्करी को और उसकी जगह कोई नए ज़माने की अच्छी चीज़ डलवाऊँ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी इसके फ्यूम्स के लिए फिर आपको पीछे एक ना एक सॉकेट सी गले में रखनी होती है ताकि वो फ्यूम्स पीछे की तरफ ना जाएं आगे। अब इस बात से मैंने कहा मराने के चक्कर में, ये पहले भी हमने इतने डरे हुए हैं कि दांत साफ कराते कराते बंदे की जान भी जा सकती है, वसीम अकरम की वाइफ याद है ना आपको?
1: हाँ जी,
0: वो डेंटल से ही उनको हुआ था।
1: नहीं, ये सब अजीब की चीज है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त।
0: गए आप दांत साफ कराने, लेके आप ब्रेन का इन्फेक्शन आ गए तो लोग कहेंगे पता है लोग क्या कहेंगे, हमें तो पहले से पता था एक नॉर्मल ब्रेन का आदमी ये काम तो नहीं कर सकता जो बोल के लब आ तो मैं जाते हुए लोग अपनी आंखें कान नाक दे रहे हैं, मेरे किसी काम के तो है नहीं, मैं ब्रेन दे जाऊंगा कि इसको खोलो चेक करो कहाँ पे चोट लगी थी बचपन में, ये जो मैं दरिया में गिरा था घोड़े से और पुल के नीचे से आया था तो वहां तो सट नहीं लगी मेरे सर में ये।
1: अल्लाह ज़्यादा, वो एक अलग वाक्य जो आपने सुनाया था, जो आप गिर गए थे,
0: आई वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड, हाँ जी 1 साल का था मैं। घोड़ी पे मैं शेर खान के साथ जा रहा
1: हूँ। अजीब चीजें हुई हैं
0: पता नहीं, और जो भी हुआ उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया था, मेरी माँ कहती है। तो उसके बाद ना कोई चीज मेरी फिर एलर्जीज नॉर्मल नहीं रही, मुझे हर चीज फिर उसके बाद ही शुरू हुई थी। बट बच गए उस पानी में, सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक तरफ, दूसरी तरफ वो पत्थरों का पुल था, उसके नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हो सकते थे बच्चे का जो सर, और जो भी मुझे चोट लगी है उसके बाद से शो निकला है। शुक्र है मैं,
1: शुक्र
0: है कुछ चोटें, जैसे कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, इसी तरह कुछ चोटें भी अच्छी होती हैं लगता है। अगर प्यार से मारी जाए और रब की तरफ से ना वो एक लात जो कुब्बे को रास आ गई और उसका हंच जो था ना, वो हंच बैक जो था ना वो सीधा हो गया।
1: अज़ाला यू सच अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, अल्हम्दुलिल्लाह।
0: और बेसिकली ब्लेसिंग्स आप लोग हैं, और आपने अभी जो इतना अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज एक स्ट्रेसफुल डे को डी स्ट्रेस करने में अपना तीन मेहरबान लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। आज कॉल्स वैसे कम थी, लेकिन मेरा ख्याल है लोग जब आप और हम बात कर रहे होते हैं, और शहनाज जी और हीरा सिंह जी तो फेवरेट लोग हैं लोगों के, तो इनकी डिस्कशन से जो शगुफे फूटते हैं, जो क्लिप्स बनते हैं, और जो शो जिस किस्म का बनता है लोगों को बड़ा पसंद आता है। पिछले तीनों शोज़ जो हैं ये अभी तक बहुत अच्छे रहे, मैं ग्रेटफुल हूँ। और आपको रब जो है वो सेहत और भी अच्छी और बेहतर अता करे, ताकि आप सारे स्वेटर के बटन खुद बंद कर सकें, ठीक है जी, और खुश रह सकें। इसी तरह खनखनाती हुई हंसी, जब आप नहीं थी तो हमने आपका यू आर लिसनिंग टू रेडियो आज़ाद, हेलो हेलो माई डार्लिंग्स, वो सब जो था वो हमने लोगों के गोश गुजार किया और रूहानी तौर पे आपको प्रेजेंट रखा, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना वो हमारे साथ शो में रह सके।
1: सलामत
0: खुश रहें, ग्रेटफुल। लेडीज एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहते हैं आपसे, वक्त हुआ चाहता है जी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपके लिए खबरनामा, खबरनामे के बाद आपका शो, और आज का जो पोम और आपका ट्रैक जो है हम पे उधार रहा अगले शो में। अगला शो इससे बहुत बेहतर होने वाला है। उस शो से पहले हमने कुछ, अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी हम दिसने शो में आपसे करेंगे। कुछ नए टॉपिक्स हमने आपको देने अगले शो के, और बहुत मज़ेदार टॉपिक्स जो पहले कभी किसी रेडियो पर नहीं हुए होंगे, कभी बोल के लब आज़ाद है तेरे मेन्यू, ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिससे जो रिलेटेड है हमारी ऑडियंस से, वो करेंगे हम आपके साथ, कुछ फन क्रिएट करेंगे इन दिनों में, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स, और फिर हमने शो से क्या सीखा, और उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे अपने सीजन 18। ये सीजन 17 आज तक का सबसे लंबा सीजन था, और ये तमाम आप लोगों की मेहरबानियों से हम यहाँ तक पहुँचे। जो भी टूटा फूटा हमने काम किया और आप लोगों ने उसको सलाम किया, उसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको वो बात तो याद होगी जिसकी वजह से ये शो बना, फैला, फला फूला और यहाँ तक पहुँचा। ये करेंगे, सब कुछ हो सकता है, अगर ये वो की है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो चीज़ हमने एक आपके लिए बनाई है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: It doesn't take much to bring some difference. You give some change, which makes a change. Because nothing gets mileage like a charity. Just a little change turns into a chain. And before we know it, the results are massive. So give a little to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
3: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
2: This is Inspire FM.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 6 o'clock.
5: Any health advice given, whether general, diet, physical or spiritual, is general only and must be verified by your doctor. If you need medical advice, please consult a doctor.

0: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
1: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
2: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
3: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
4: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
5: While the world watches the crisis in Gaza unfold on the news, MATW is there, on the ground, right now, actively operating inside Gaza, delivering critical aid directly to those who need it. Medical supplies, food, clean water, and emergency shelter, when it matters. Your donation can save lives, right now, on the ground. Text MATW to 70470 to donate £10 or visit matwproject.org.uk, because when it matters most, we're there.
6: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। Inspire FM Community Awareness Message.

0: छोटी सी मिसाल है ये सूरतुल अहज़ाब में, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। शादी के बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला ने जज्बात के बारे में बात की है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने किसी भी आदमी के दिल में दो दिल, किसी आदमी के अंदर दो दिल नहीं डाले। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही। यहाँ पे दो अल्फाज जो हैं वो ज़रा अजीब हैं, एक तो है रजुल मर्द, लेकिन अल्लाह ताला ने तो मर्द इंसान कहा होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, और फिर दिल की बात है तो दिल कहाँ होता है, सीने में, सीने का लफ्ज़ अरबी में है सदर, तो अगर कहा होता मा जअलल्लाहु लि इंसान मिन क़ल्बैनि फ़ी सदरिही, रजुल की जगह इंसान और जौफ की जगह क्या सदर, अगर इंसान कहा होता तो कौन शामिल होता, मर्द भी और औरत भी, ठीक है, और अगर सदर कहा होता जौफ की बजाय तो सिर्फ सीने की बात हो रही होती, जौफ पूरा जिस्म होता है, बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला ने मर्द के जौफ के अंदर, यहां से यहां को जौफ कहते हैं, पेट से लेकर सीने तक गर्दन तक ये जौफ है हमारा, इसके अंदर दो दिन नहीं डाले, लेकिन औरत के अंदर तो बच्चा आ जाता है ना, और जब बच्चा आ जाता है तो कम से कम कितने दिल हो जाते हैं, दो तो हो जाते हैं, लेकिन वो सीने में नहीं होते, लेकिन वो कहाँ होते हैं, जौफ में तो होते हैं ना। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, सुब्हानअल्लाह। इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, बनी इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, सूरतुस सफ में दोनों का एक आयत के बाद दूसरे का जिक्र है, पहले मूसा फिर ईसा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ुरुनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपनी कौम से, अपनी कौम से कहा मेरी कौम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, ये मूसा के अल्फाज हैं। अगली आयत में किसके अल्फाज आएंगे, ईसा के। किस कौम से बात कर रहे हैं, उसी कौम से जिससे मूसा बात कर रहे थे, यही बात है ना। यहाँ कहते हैं या इफ़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा बनी इसराइल, इसराइल की औलाद, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ, एक ने कहा मेरी कौम, दूसरी ने कहा बनी इसराइल, देखें। और फिर दूसरा मूसा के बारे में जब कहा था तो मूसा के वालदैन का जिक्र किया, मूसा इबन कुछ कहा कि नहीं, लेकिन ईसा के बारे में क्या कहा, इफ़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, तो दो फर्क आ गए, इन फर्कों को समझ लें, और ये एक के बाद दूसरी है, दोनों आयात सूरह सफ की हैं। देखिए किसी कौम से होना उसके लिए लाजमी ये है कि आपके वालिद उस कौम से हों। जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना मेरी कौम, तो क्या कह रहे हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी या कौमी नहीं कहते मेरी कौम, क्यों, उनके तो वालिद हैं ही नहीं, सिर्फ वालदा है, और वालदा से कौमियत नहीं आती, कौमियत कहाँ से आती है, फादर से आती है, इसीलिए आपका लास्ट नेम, आपका नाम कहाँ से आता है, फादर, आपकी शनाख्त बाप से आती है, आप मदर किस कोई भी एथनिसिटी रखती हो, आपका जो नाम है, हेरिटेज है, वो कहाँ से आ रही है, फादर से आ रही है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, या कौमी कहा होता तो बहुत ही गलत बात होती, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की, यहाँ तक कि मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत को बरकरार रखा है इन अल्फाज में। दूसरा, यहूदियों ने नई मज़े का हीला डाला, यहूदी कहते हैं कि असल में यहूदी होने के लिए, बाकी कौमों के लिए और है, बाकी कौमों में से होने के लिए बाप का उस कौम से होना ज़रूरी है, यहूदी होने के लिए माँ का उस कौम से होना ज़रूरी है, यानी माँ यहूदी हो तो तुम यहूदी हो, उन्होंने नया फार्मूला निकाला, बात की बात है। मैंने कहा बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, लेकिन तुम अपने आप को इसराइल की औलाद क्यों कहते हो, बाप के नाम से तो पुकारते हो, अगर बाप से एथनिसिटी नहीं आती, तुम्हारी शनाख्त नहीं आती, तो तुम्हारी कौम का नाम ही बाप से है, इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। फिर मैंने एक और सवाल भी पूछा, मैंने कहा मूसा, तुम रबाई से मैंने बात की थी, मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तुम्हारे नज़दीक भी मदियन भाग गए थे ना, मदियन भाग गए थे, कहते हैं हाँ भाग गए थे, बाइबल में भी है मदियन अरब कौम है, कहते हैं हाँ अरब कौम है, वहाँ मदियन में उनकी शादी हो गई थी, शादी किससे हुई थी, अरबी औरत से हुई थी, पे औलाद हुई उनकी, तो तुम्हारे नजदीक तो मूसा की औलाद अरब है। फिर मसला क्या है यार? तो अल्लाह ताला ने, बात असल में यह है कि असल में नाम जब इंसान लेता है ना, तो नाम अपने बाप का लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस औरत को, इस अजीम शान औरत को इतना मकाम दिया कि एक नबी का नाम लेने के बाद ईसा, इतना काफ़ी ना समझा कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, बल्कि कि ये कि वो मरियम के बेटे हैं, उनका नाम लिया जाए ख़ास, ताकि ये बात वाजे रहे कि ये ऐसी माँ है जिसके, इस ऐसे बच्चे की माँ है जिसको बाप की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी कौम को इस तरह नहीं बुलाता। वो कहता है या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, इस एक छोटी सी आयत में हमारा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अकीदा, हमारा मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत के मुतालिक अकीदा, और जो मकाम अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, किसी और नबी के बारे में आप ये नहीं देखेंगे नूह इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं देखेंगे कुरान में, नहीं नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम इब्न आपको नहीं नज़र आएगा, दाऊद इब्न नहीं नज़र आएगा, लेकिन ईसा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर क्या नज़र आ रहा है? ईसा इब्न मरियम। तो इसमें किसको इज्जत दी जा रही है? ऐसी औरत जिसने इतनी जिल्लत का सामना किया है अपनी ज़िंदगी में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसने जिस जिल्लत का सामना किया है सलामुन अलैहा, आप अंदाज़ा करो कि उस जिल्लत का सामना करने से पहले कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ला हादा, काश के मैं इससे पहले मर गई होती। उनके अल्फाज कुरान में मरियम सूरत मरियम में रिकॉर्ड है। और फिर जो खुलेआम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, उन पर इल्ज़ाम लगाया, किसी एक ने, आपको आपसे कोई ऐसी बात कोई फ़ोन पे कर दे, कोई टेक्स्ट मैसेज पे कर दे, कोई प्राइवेटली कोने में जाके कर दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सारे इकट्ठे होके, सारा मुसलमान मजमा इकट्ठे होके जो उनकी बेहरमती कर रहा है, तो अल्लाह ताला का इंसाफ देखें, जिस औरत ने ये तकलीफ़ और ये इम्तिहान अल्लाह की खातिर उसने बर्दाश्त किया है, उसका क़्यामत के दिन तक उसका एहतराम किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ईसा का नाम लेते हुए ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब भी उनकी ज़बान से या बनी इसराइल निकलता है तो उनकी माँ को सलाम है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुन अलैहा, या ईसा इब्न मरियम, या ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह। मैंने ये नोट्स में डाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे फिर भी जिक्र कर देता हूँ अपने नबी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अपने रसूल का भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, या का लफ्ज़ समझते हैं आप? हम तो वैसे इस्तेमाल अब नहीं करते, लेकिन जैसे आदम, आप और आपकी बीवी, किसी को पुकारने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है, या आदम, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या नूह। इसके बाद अल्लाह कहते हैं या इब्राहिम कद सद्दक्ता अर्रुया, या इब्राहिम अन्ना देना, या इब्राहिम, या नूह, या आदम, या इब्राहिम, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, या ईसा इन्नी मुतवफ़ीका वराफ़िउका इलैया, या मूसा इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफ़तन फ़िल अर्ज़। अंबिया के साथ बार बार क्या आ रहा है? या एक मरतबा कुरान में नहीं है या मुहम्मद, एक मरतबा नहीं है। जब नबी को पुकारते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दथिर, या अय्युहन नबी बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फअंज़िर। सुभान अल्लाह। उनको नाम से ही नहीं पुकारते। अच्छा, उनको नाम से वो नहीं पुकारते जब नए बदू इस्लाम में आए, कबीले इस्लाम में आने शुरू हुए हुदैबिया के बाद, तो उनको इस्लाम की तहजीब का कुछ इल्म नहीं था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, कबीले के कुछ सरदार वो घर के अंदर थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं घर के बाहर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आ रहे। वो कहते हैं या मुहम्मद उखरुज अलैना, मुहम्मद बाहर निकलिए, हमने बात करनी है। कैसे पुकारा? या मुहम्मद। अच्छा, या मुहम्मद के अल्फाज में कोई बेअदबी नहीं है असलन, क्योंकि या आदम, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, वो तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया है, لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم ایسے اس کو ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے. اور پھر ان کا نام محمد، محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، چار مرتبہ محمد آیا ہے اور ایک دفعہ احمد آیا ہے، یہ بھی سن لیں. آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ساتھ میں سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد. سورۃ محمد آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورت رسول کے ساتھ ذکر، چار مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. چوتھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورت محمد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. سورت محمد کی آیت ہے. وہاں پر محمد کا ذکر ہے لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا. کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی، کی جائے گی. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی. اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی. اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسی تعریفیں سکھائیں گے جو کبھی کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئیں، اور ان کو ابھی تک نہیں سکھائی گئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ سکھائی جائیں گی اس وقت. تو یہ ہے، ہو گئے احمد. لیکن دوسری طرف کہا وہ ایسی شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. اب اندازہ کریں عیسائی مذہب آج مسلمان مذہب سے تعداد کے اعتبار سے 2 سے 3 گنا بڑا ہے، تعداد میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حمد پھر بھی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کریں. پھر اندازہ کریں کہ عیسائیت، کیونکہ میں نے عیسائیت کو قریب سے دیکھا ہے، امریکہ میں رہ کے میں نے عیسائیت کے بہت سارے فرقے، بہت سارے چرچز، ڈینومینیشنز دیکھی ہیں. عیسائیت کی بنیاد ہے حمد، پریز دا لارڈ، بی گریٹفل. ساری پورے مذہب کی بنیادی کیا ہے؟ حمد. اور پھر پریز جیزس، تھینک جیزس، پوری بنیاد وہ ہے. اور اس جس شخص کی غلط طریقے سے اتنی حمد کی جانی تھی اس کی زبان سے کہلوا دیا قرآن میں کہ کوئی آ رہا ہے جس کی حمد زیادہ ہوگی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھوڑے سے خواص تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو قرآن میں. تو ہمیں نعتوں کا شوق ہے، جیسی نعت، جیسی تعریف ہمارے نبی کی قرآن میں ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. چلیں ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون، دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرق کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر، دوسری آیت میں مشرق. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی ہوا سے، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کری حل کافرون. دوسری طرف کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین، تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے، جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کریہ المشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں، کفر किसको कहते हैं पता है? इनकार को ही नहीं कहते सिर्फ, कुफर अरबी में कहते हैं दफनाने को। कुफर का असल मायना अरबी में क्या है? दफनाना। जो चीज दफनाई जाती है वो अंधेरे में होती है। कहा है कि जो लोग अंधेरे में हैं ना, वो दुनिया को भी अंधेरे में रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, क्योंकि वो खुद किधर हैं? अंधेरे में। बोलो करी हल काफिरून, अंधेरे वाले लोग हैं काफिर। जो चीज को अंदर दफनाता है उसको काफिर कहा जाता है। बल्कि काफिर का लफ्ज पुरानी अरबी में, इस्लाम से पहले, काफिर का लफ्ज किसान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो बीज को जमीन में दफनाता था, इसलिए उसको काफिर कहा जाता था। तो यहां पर जो कुफार का लफ्ज और काफिरून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें एक मंजर बना दिखाया गया है हमें कि एक तरफ है अल्लाह का नूर और एक तरफ है उस नूर को छुपाने के लिए जो उसको दफनाना चाह रहे हैं, अपने मुंह से, अपने प्रोपेगेंडा से, अपनी बकवास से उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अब उसके अपने मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके, अपने चैनल्स को इस्तेमाल करके, अपनी फंडिंग को इस्तेमाल करके, अल्लाह कह रहा है वल्लाहु मुतिम्मुन, वो तो करके ही रहेगा, उसे तो मुकम्मल करनी है अपनी अपनी रोशनी। वो जितनी भी नफरत कर लें, उनकी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस आयत में भी बहुत अजीम हिकमत पता है क्या है? कुरान अल्लाह ताला का, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान को नूर बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अनज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है। तो कुरान के औसाफ में से एक अजीम वस्फ क्या है? नूर। अनज़लना इलैकुम किताबन व नूरन मुबीना, हमने तुम पर किताब नाजिल की और बहुत वाज़ह नूर नाजिल किया। नूर, अच्छा, नूर की जो नूर का दुश्मन क्या है? तारीकी, वुलुमात, है ना। ये लोग अपने मुंह से, अपने अल्फाज से ऐसे समझते हैं कि ये किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। युरीदुना लियुतफिउ नूरल्लाहि बि, तस्वीर क्या खींची जा रही है? को बारीक सी मोमबत्ती है, उसको वो बुझा रहे हैं। अल्लाह ने क्या मिसाल दी है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जैसे सूरज निकलता है ना तो सारी चीजों पर रोशनी आ जाती है। अब अंदाजा करने की कोशिश कर रहा है, ये सूरज बलाउकली हल काफिरून, क्योंकि जो नूर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है वो तो सबको रोशन करके रहेगा, लेकिन वो रोशन फौरन होता है कि स्टेजेस में होता है? स्टेजेस में होता है। इस तरह इस नूर का इत्माम जो है वो स्टेजेस में होगा। तो इंसान को, मुसलमान को खामखा पैनिक नहीं कर, ये देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, अब क्या होगा, अब इस काम कैसे जवाब देंगे, ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फितना शुरू कर दिया है, अब तो ये नूर खत्म होने के खतरे में है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वलौ करिहल काफिरून। और इसमें पैनिक करने के बजाय हमारा काम क्या है, हमें क्या जिम्मेदारी दी है? अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी है कि उसका सीना और उसकी जबान इस नूर को फैलाए, और जब मुसलमान इस नूर को फैलाने का काम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला बेसिकली क्या करेगा, हमें हटा के किसी और को रख देगा जो ये काम करने के लायक होगा। हमें चुना था क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत है, अगर उस सलाहियत का तुमने इस्तेमाल नहीं करना तो ठीक है, अल्लाह ताला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, तुम्हारी जगह किसी और को रख देगा, वो तुम्हारी तरह के निकम्मे नहीं होंगे। पोटेंशियल हर एक में होता है, टैलेंट हर एक में होता है, टैलेंट का इस्तेमाल सारे नहीं करते, यही बात है ना। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। अच्छा, दूसरी तरफ काफिर नहीं कहा अगली आयत में, मुशरिक कहा, उसकी क्या हिकमत हो सकती है? यहां कहा है कि अल्लाह ताला ने एक दीन दिया और उस दीन को तमाम अदियान पर जाहिर कर दिया, यानी उन पर गालिब कर दिया, और इसकी वजाहत लियो दे रहा हूं, उसका इजहार करना, उसके कुछ मायने हैं, एक है गालिब करना और दूसरा कि इसका हक इतना जाहिर हो जाए कि बाकियों का बातिल भी जाहिर हो जाए, जुहूर से इसका ताल्लुक भी है। तो हुआ ये कि अब लोग क्या सोचेंगे कि ये दीन तो फैल रहा है लेकिन ये भी एक मजहब है और बाकी और भी मजहब है, इनको साथ साथ चलने दो, बराबर हैसियत के हैं, जैसे इंसान सारे बराबर हैं उनके मजाहब भी बराबर हैं, कोई एक कल्चर किसी कल्चर से बेहतर नहीं है, वर ऑल इक्वल, डिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में डिवर्सिटी सिखा रहे हैं ना आजकल। डिवर्सिटी में क्या है, आप ऐसे हो या वैसे हो या जैसे हो, आप सारे क्या हो, एक ही जैसे हो, आप सब बराबर हो, यूनिवर्सिटी के नाम पे हक और बातिल बराबर हैं, गलत और सही बराबर है, अदब और तहजीब और जानवरपना बराबर है, और इसका नाम हमने बड़े प्यारे नाम रखे हैं, डिवर्सिटी, राइट। अल्लाह ताला कह रहा है जितना भी ये मुशरिक होता क्या है, पता है मुशरिक क्या होता है? एक चीज को दूसरी के साथ जोड़ देना, उनको बराबर कर देना। इसीलिए बराबर करने के लिए एक और लफ्ज अरबी में है अदल, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, जो लोग अल्लाह ताला पे अपने रब पर कुफर करते हैं वो चीज़ों को बराबर करते हैं, जो लोग बुतों को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, और जो और अदियान को इस्लाम से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, आप भी, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, आपको हमारे दीन को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दीन की हक की बात इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप जिससे भी जाके खा लो, जो दीन है जिससे भी जाके आप जो भी पूजा कर लो, हर एक का अपना मसला है। आपको इतनी ज़्यादा इस दीन के बारे में और इसके गलबे के बारे में और इसकी बात फैलाने के बारे में और इसके दलाइल पेश करने के बारे में क्या तकलीफ़ है आपको, क्या ज़रूरत है इतनी आपको? तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन लोगों को शिर्क पसंद है ना, शिर्क सिर्फ अल्लाह में नहीं होता, शिर्क अदियान में भी होता है, सबको एक साथ रख लो, कोएग्जिस्टेंस है, ये टॉलरेंस की बात है, तो उनके बारे में कहा ये जितना भी नफरत कर लें, इस दीन ने सामने ऊपर उभर कर आना ही है, और जितना ये जाहिर होगा उतना उनका बातिल सामने आ जाएगा। इसी बात से वो डरते हैं, इसी बात से वो मुखालफत करते हैं, वलौ करिहल मुशरिकून। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या वो कुरान पर उस पर तदब्बर नहीं करते? तदब्बर कहा जाता है किसी चीज़ के पीछे देखना, दुबर पीठ को कहते हैं। इस आयत के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है? एक उसका जाहिर है और उसके पीछे क्या क्या क्या क्या हिदायत, क्या क्या रोशनी, क्या क्या नसीहत उसके पीछे है। असल में ये पूरा कोर्स एक तरह से तदब्बर ही का कोर्स है, सारी मिसालें जो मैं आपको दे रहा हूँ वो हम तदब्बर ही की एक्सरसाइज कर रहे हैं एक तरह से। अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं अफला यतदब्बरून अल-कुरान, और अगर किया होता तदब्बर तो कहते हैं वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, और अगर ऐसा होता कि ये अल्लाह के अलावा किसी और से आया होता, अगर कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और से आया होता, कहते हैं लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तो ज़रूर ऐसा होता कि इसके अंदर वो बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, तनाकुज़ात, तजाद, बहुत ज़्यादा तजाद पाते उसके अंदर, इख्तिलाफन कसीरा यानी अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता, तजाद होता। और इस आयत में इशारा इस बात की तरफ भी है जो तदब्बर करेगा कुरान पर उस पर यह बात पूरी तरह वाज़ह हो जाएगी कि यह अल्लाह ताला के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अजीब बात यह है, इख्तिलाफ का लफ्ज़ कुरान में बहुत दफ़ा आया है, इख्तिलाफ़ लैल व नहार, इख्तिलाफ का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इख्तिलाफन जो अरबी नहू समझते हैं ये मनसूब है और नकीरा है। इख्तिलाफन पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, तो लफ्ज़ी एतबार से भी अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इख्तिलाफन का लफ्ज़ भी कहीं और इस तरह नहीं आया, एक ही मरतबा आया है। सुभानअल्लाह, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: इस आयत को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मज़े की हिकमत है, ये बहुत बहुत खूबसूरत हिकमत है। इस तरह सोचें कि तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, ए बी और सी, ठीक है, तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, और ए और बी की लड़ाई हो गई, शदीद लड़ाई होगी दोनों की। अल्लाह ताला कह रहे हैं وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार कुटाई पर आ जाए, कत्ल तक नौबत आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। किससे कहा जा रहा है सुलह करवाओ, ए से या बी से या सी से? सी से कह रहे हैं कि ए को बिठाओ और बी को बिठाओ और अब सुलह कराओ। तो तीन ग्रोह हो गए, ठीक है।
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: a radio station for the community, by the community.
3: Inspire FM.
5: Why do Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allah, Allah.
8: Praise of Ashura on Inspire 105.1 FM.
7: Allah, Allah.
8: Give charity generously, supporting the needy, feed the hungry, and help those oppressed. Acts of kindness and charity during Ashura can carry immense rewards. And remember, the Ummah is one body.
9: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
10: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai, lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat pesh kar raha hai. 11th of July baroz hafta din subah 11:30 se sahpair 4:30 baje tak. Crescent Hall Bury Park mein sirf khawateen ki nishiston ka ehtimam kiya gaya hai jisme aap apne aziz o aqarib ke liye rishta dhoond sakenge. Hamare paas mahdood nishistein baaki hain. Aaj hi registration karwaiye aur is kaar-e-khair mein hissa lijiye. Mazeed malumat ke liye visit kijiye rishta-networking.co.uk. Apne jeevan saathi ki talash Rishta Networking aur Inspire FM ke saath.
11: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
12: Suleiman Rafiq,
13: Leo Nizal,
14: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
13: Tune in on 105.1 FM.
14: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
11: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

आपकी आपके पास टाइम होता है और आपके पास सोचने का, रिव्यू करने का, उसको दोबारा दोहराने का, उसमें तब्दीली लाने का मौका होता है। लेकिन बोलने में इसमें से कुछ भी नहीं होता। बोलने में जो मुंह से निकला वो फाइनल है, वो वापस नहीं लिया जा सकता। लिखे हुए को आप मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कागज को फेंक सकते हो, लेकिन जो मुंह से एक दफा निकल आया और किसी ने सुन लिया, तो आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं कुछ और नहीं कर सकते। कुरान जब नाजिल हुआ और दुनिया में फैला और अरब में जो फैला, कुरैश में जो फैला, वो किताब के जरिए से नहीं, कलाम के जरिए से फैला। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो बात कह दें उसमें अब तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो जैसे ही कहते हैं लोग याद कर लेते हैं, और फिर याद करके औरों को सुनाते हैं, फिर वो याद कर लेते हैं। तो अगर एक सूरत में भी एक लफ्ज़ यहाँ मेरे से अखोहम रह गया, यहाँ अखोहम होना चाहिए था, टू लेट, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और अब हम 1500 साल बाद वही उसी कलाम को, जो कलाम था उसको हम किताबी शक्ल में देख के, अब हम एक एक बारीक लफ्ज़ की दिक्कत के बारे में बहस करने के, ये लफ्ज़ यहाँ पर है और ये लफ्ज़ यहाँ पर ऐसे है, तो हैरानगी होती है कि इंसान की सलाहियत में जो बात करना होता है ना, उसमें इतने लेवल का लिहाज रखना कि यहाँ पर ये लफ्ज़ होना चाहिए, यहाँ पर ये लफ्ज़ होना चाहिए, यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। और जैसे जैसे हम इस सेमिनार से गुजरेंगे, खासकर इस सेक्शन में और इससे अगले सेक्शन में, 4 और 5 में खासकर, ये बात आप पर बहुत ज़्यादा वाजे हो जाएगी कि ये इंसानी सलाहियत से बहुत आगे की चीज़ है, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, और इसमें बाय द वे, क्योंकि जो मगरबी तहजीब है उसमें भी इस्लाम बहुत पढ़ा जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में इस्लाम पढ़ा जाता है, बॉस्टन में पढ़ा जा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ा जा रहा है, ऑक्सफर्ड में इस्लाम पे PhD होती है, मुस्तशरिकीन इन्हें कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट ना, तो वो ईमान के नुक्ते नज़र से इस्लाम को नहीं पढ़ते, उनके उनका वो खुदा को नहीं मानते उनकी, क्योंकि वो PhD थीसिस कर रहे हैं, तो उनका नज़रिया यह होता है कि ये एक तारीखी फिनोमेना है और इसको हम किसी तरह से बयान करें कि ये कैसे हुआ, इस्लाम कुरान क्या है, कहाँ से आया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वो थीसिस पेश करते हैं, उनमें से कोई कहता है कि कुरान जो है ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसको जमा करके और इसको एक किताबी शक्ल दी, वो उसमें पूरा वो PhD थीसिस लिख देगा, उसको डिग्री भी मिल जाएगी। कोई और आके कहेगा कि ये बाद में जो है ये डेवलप हुआ और उसमें शुरू में ये सूरतें नहीं थी, बाद में ये सूरतें आ गई, और उस पर वो पूरी PhD थीसिस लिख देगा। तो ये क्योंकि उनके जहन में ये बात आ ही नहीं सकती कि कोई चीज़ जो याद की गई थी वो वैसी ही रहे जैसे पहले थी, और ये इनके जहन में इसलिए नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं इसको, इस गेम को अमेरिका में टेलीफोन कहते हैं, अगर मैं आपके कान में चुपके से कुछ कह दूं और मैं आपसे कहूं आप चुपके से इनके कान में कह दें, और आप उनके कान में कह दें, और आप उनके कान में कह दें, और इस तरह हम पूरे क्राउड से गुजर के आखिरी बंदे से मैं पूछूं भाई क्या कहा था, तो क्या होना है। मैंने बच्चों के साथ कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने एक पहले बच्चे से कहा था बाब फंच्ड जो, बाब ने जो को मुक्का मारा, उसने दूसरे के कान में, तीसरे के कान में, चौथे के कान में, जब 50वें बच्चे तक पहुंचे मैंने पूछा क्या कहा था, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकसद कहने का ये है कि जब इंसान बात करता है और बात के ज़रिए से चीज़ फैलती है ना, तो उसमें क्योंकि हमारा जो हाफ़ज़ा है वो इंसानी हाफ़ज़ा, उसमें कमज़ोरी आ सकती है, शायद मुझे कोई बात याद नहीं रही, शायद मुझे कोई लफ्ज़ याद नहीं रहा, हो सकता है, तो उसमें गलती का इम्कान ज़्यादा है। अगर कुछ कोई चीज़ लिख ले, वो लिखी हुई चीज़ मुझे मिल जाए, तो उसमें जो पुरानी असल बात थी उसका रिकॉर्ड ज़्यादा काबिल कबूल है, वो ज़्यादा रिलायबल है, काबिल एतमाद है, क्योंकि वो लिखा हुआ है, और जो बात ज़बानी कही गई है वो काबिल एतमाद कम है। और हमारा जो दीन है, कुरान खासकर, उसकी असल में किताबत नहीं है, ठीक है वो मुरतब हुआ है किताबी शक्ल में और उसको जमा किया गया और मुसहफ़ बनाई गई, लेकिन मुसहफ़ तो एक आध थी, या पूरे एक गाँव में, पूरे एक शहर में एक आध मुसहफ़ आपको मिलेगी, लेकिन हज़ारों की तादाद में सहाबा कुरान को याद कर चुके, औरों को याद करा रहे हैं, फिर वो और याद करा रहे हैं, उन सारों के पास मुसहफ़ नहीं है, कुरान की एक कॉपी नहीं है उनके पास, वो दिल से याद कर रहे हैं, और वो फैल रहा है और फैल रहा है और फैल रहा है और फैल रहा है। जो चीज़ ज़बानी याद करके फैली जाती है ना, फैलाई जाती है, उसमें तग़य्यूर का और उसमें हाफ़ज़े की कमज़ोरी की वजह से ऊंच नीच का इम्कान ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है, ज़्यादा है। और जितना वो फैलेगा, कितना इम्कान है कि और तग़य्यूरात होंगी, और यानी इनके पास इसकी इस सूरत में ये

0: था या ये लफ्ज था, ये सूरत पहले थी या ये सूरत बाद में थी, ये याद यहाँ पे थी वहां पे थी, इसका इम्कान बढ़ता चला जाएगा। जितने और लोग हिफ्स करेंगे उतना ही उसका इम्कान बढ़ता चला जाएगा। और यही मगरबी जहन का एक खाका है कि तारीख जो है ना, जो रिलायबल तारीख है, जिस तारीख पे हम एतमाद कर सकते हैं कि ये वाकई उस वक्त की चीज़ है, वो लिखी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मुआवजे का कोई, उसके इसका कोई एतबार नहीं, ये उनकी ज़हनियत है। अब उन्होंने साइंस का भी इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हो सकता है उनको कोई पुराना कोई नुस्खा मिल जाए कुरान का, या उन्होंने जैसे वो यमन में उनको एक मिला, तो उन्होंने उसकी वो कार्बन डेटिंग करते हैं, यानी एनालाइज करते हैं कि ये किस साल का है, कितना पुराना है ये, उसके कीमियाई उसका एनालिसिस करके वो निकाल लेते हैं ये 8 सदी पुराना है या 12 सदी पुराना है या 1000 साल पुराना है, वो उसको अब उसका तजिया वो कर सकते हैं। उसकी वजह से अब जब वो कुरान के पास आते हैं तो ये कहते हैं ये तो इसके जो नुस्खे हमें मिलते हैं वो तो मुझे एक नुस्खा कहीं यमन में किसी पत्थर के नीचे मिल गया, कोई पुराना, कोई वहाँ पर मिल गया, कोई वहाँ पर मिल गया, लेकिन असल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। मेरे जहन में ये जो सवाल था मैंने बहुत सारे मुस्तशरीन से पूछा, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। आपके नज़रिए के मुताबिक तो एक साल के अंदर ही लाखों कुरान होने चाहिए थे, एक नहीं लाखों, क्योंकि अगर लाखों लोगों ने याद किया है और हर एक के हिफ्ज में कोई ना कोई इधर उधर खलल है तो इसको कुछ और याद होगा, उसको कुछ और याद होगा। और उस वक्त तो ऐसे नहीं, हम समझते ना खिलाफत की हुकूमत जो है उसका बड़ा कंट्रोल था, ऐसे थोड़ी है कि वो फ़ोन उठाए और कहा इसने क्या याद किया है या कैमरा ऑन करो, वो तो हज़ारों मील के फासले पर हैं, वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कौन किसको क्या सिखा रहा है। ये तो अब एक कुदरती तौर पे कुरान जल्दी जल्दी फैल रहा है। एक किताब का लिखना भी उस ज़माने में कितने दरख्त काटने पड़ेंगे, दरख्तों से कितनी देर लगेगी उसको कागज़ बनाने में, फिर कितनी देर लगेगी स्याही, और कितने सलाहियत रखते हैं लिखने में, प्रिंटिंग में इतनी देर लगती है, लिखने में कितनी देर लगेगी, और उससे कहीं तेज़ी से कुरान ज़बानी फैल रहा है ना। और अब वो ज़माना, और अब 1500 साल हो गया, इस वक्त तक तो कुरान की करोड़ों कॉपियां होनी चाहिए थी जिनमें हर एक में फ़र्क हो उनके नज़रिए के मुताबिक। अब फिर सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये बात मैंने टेक्सस में की थी, मैं टेक्सस में था तो कुछ ईसाई हजरात भी आए हुए थे, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि इंटरनेट ख़त्म, लाइब्रेरीज तमाम की तमाम बंद, किसी किताब का किसी को एक्सेस नहीं है, सब गायब, और अब मैं यहाँ इस शहर के रहने वालों से कहूँ आप बाइबल को दोबारा से रिप्रोड्यूस करें इस शहर के रहने वालों, चलें थोड़ी आसान कर देता हूँ आपके लिए, मैं पूरे अमेरिका के खित्ते को जमा करके कहता हूँ आप पूरे अमेरिका के सारे शहरों को ले लें, सारे स्टेट्स को ले लें, चलें कैनेडा को भी जमा कर लें, मेक्सिको को भी जमा कर लें, आप पूरी बाइबल को दोबारा रिप्रोड्यूस करें। और फिर मैं एक और चैलेंज देता हूँ, जो यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको भी अब दोबारा लफ्ज़ बाय लफ्ज़ रिप्रोड्यूस करें। और मैं कहता हूँ मुझे सैकड़ों मील नहीं चाहिए, मुझे एक मील का फासला चाहिए, आधा मील कर लें, चलें रुबा मील कर लें, इस मस्जिद का रुबा मील, और हमारा प्रोजेक्ट ये हमने कुरान को दोबारा रिप्रोड्यूस करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे इस कुरान की हिफाजत की है, सुभान अल्लाह, अल अजीब मिन अल कुरान। इसीलिए कुरान ने जब कहा ना कि कुरान की हिफाजत की गई है तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्र, अल किताब नहीं कहा, अल ज़िक्र कहा। अल ज़िक्र क्या है, याद दहानी, ये भी है जो चीज़ याद की जाती है उसको भी जिक्र कहते हैं, अलमज़कूर भी जिक्र है, अलमुदक्किर भी जिक्र है, मस्तर में वो सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो कुरान की असल हिफाजत उसकी उसके हिफ्ज़ के ज़रिए से की गई। और यही बात और अजीब हो जाती है कि जो चीज़ बोली जाती है और जो चीज़ लिखी जाती है उसमें हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग मेरी लेके उसको किताबी शक्ल में डालने की कोशिश करे तो उसमें बहुत भोंडी उर्दू होगी, उसको बहुत फिक्स करना पड़ेगा, जगह जगह मैंने बात दोहराई है, कभी आधा जुमला छोड़ दिया, कभी ये कह दिया, कभी वो कह दिया, वो सब तो निकालना पड़ेगा ना आपको। कुरान ने एक दफ़ा एक बात कह दी और पिछली मिसाल में मैंने कहा अखूहुम यहाँ निकाल दिया वहाँ डाल दिया, कैसे मुमकिन है। और ये दो आयात सूरतुल अनआम की, दो अल्फाज इंग्लिश में कहते हैं कम ऑन, उर्दू में कहेंगे इधर आओ, आओ इधर के लिए अरबी में दो अल्फाज हैं और भी हैं लेकिन दो अल्फाज हैं हलुम्मा हनुम्मा, और दूसरा है तआलो, तआला, अगर आप उम्रे पे गए हो तआला बहुत सुनेंगे, तआला या रफीक, तआला लहुना, राइट। तो हलुम्मा है और तआला, इनमें फ़र्क क्या है? एक आयत में कहा हलुम्मा शुहदा का शुहदाकुम, अपने शुहदा से कहो आओ इधर, आओ इधर, और उनसे क्या कहो अल्लज़ीन यशहदून अन अल्लाह हर्रम हाज़ा, अपने इन गवाहों को बुलाओ जो कहते हैं कि अल्लाह ने ये चीज़ हराम की है, बुलाओ उनको, उनसे कहो आओ इधर, और आओ इधर के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया हलुम्मा। दूसरी तरफ कहा कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, और तुम कहो रसूल से कहा आप कहिए तआलौ आओ इधर, मैं पढ़ के तुम्हें सुनाता हूँ तुम्हारे रब ने क्या हराम किया है। ये सूरतुल अनआम में दो दो मरतबा आओ इधर का लफ्ज़, एक लफ्ज़ 150 आयत में हलुम्मा, अगली आयत में तआलौ, क्या फ़र्क है? फ़र्क तआलौ जो है ना, ये असल में आया है उलू से, उलू, उलू कहते हैं ऊंचाई को, जैसे अल्लाह ताला के नाम में नामों में से है इन अल्लाह काना अलियन कबीरा वहु अलियुल अज़ीम, सूरत आयतुल कुर्सी वहु अलियुल अज़ीम। तआलौ असल में कहते हैं, फ़र्ज़ करें अगर मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ और मैं आपको बुलाऊँ तो आप और मैं एक ही सतह पर है ना, तो वो होगा हलुम्मा। अगर मैं ऊँचा हूँ और मैं आपको यहाँ ऊपर बुला रहा हूँ, उलू की तरफ बुला रहा हूँ, तो लफ्ज़ असल लफ्ज़ सही लफ्ज़, ज़्यादातर लफ्ज़ सही जो है वो क्या होगा तआला, उलू की तरफ आओ, ऊंचाई की तरफ आओ। जब वो एक दूसरे को बुलाते हैं तो कहा हलुम्मा, जब मेरा रब बुलाता है तो ऊंचाई की तरफ बुला रहा है ना, मेरा रब, मेरा रब, मेरे रब का कलाम, मेरे रब की हिदायत वो ऊंचाई भी पर है ना, इन इन इन सब की बातों से ऊँची है ना, इधर ऊँचाई की तरफ तो आओ, तो मैं तुम्हें बताऊँ मेरे रब ने क्या हराम किया है क्या हलाल किया है। تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم سبحان الله.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: उनके घर में बैठा हुआ था, कुछ बात हो रही थी कुरान के बारे में, अपना वो रेस्पिरेशन उठा के कहते हैं नौमान, उर्दू में बताता हूँ, अब मुझे आके कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कुरान। मैं वहां बैठा सोफे पे पिघलना शुरू हो गया, इंसान इसने 80 साल अपनी जिंदगी के कुरान पढ़ने में लगा दिया, अब कह रहे हैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा कुरान समझ में आना शुरू हो गया है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह।
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.